पौड़ी। मनमुख मोहगुबार है दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगास कर।

पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध द्वय किए जलेता छूट गई संसारी। प्रगट प्रकाश ज्ञान गुर गम्मत

अनहद बजहै शब्द अनहद बजहै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे बिन सिमरन मुक्त कत नाहे रहाउ।

बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर

सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जोग

यह भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साक्त नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत बिन

एक बह सुनहे सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुले, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत।

पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीने भगत सलाहे, मेरा प्रभु साचा असुर संहार।

रहे आन दिन गुण रव है दिन राती, आन दिन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आन दिन सदा

कुसंगत बह है सदा दुख पाव है दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार ना पाए कोई। सहजे गुण रव है दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा। उठ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया शुद्ध है शब्द विचार।

गुरमुख सच वसै घट अंतर सहजे सच समाई हे। सबना सच वसै मन माही गुर प्रसादी सहज समाही। गुर गुर करत

जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द भरम भौ भाग।

गुण निदान मन तन मह रव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस गाया।

शब्द बिन कबहू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तार तू तारी बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

मुख जाता, से जग मह काहे आया, गुर की सेवा कदे न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी,

पत खोई, बहले पेख पवह दिन राति, हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेव है।

नानक हरनाक्ष नहीं बिदारिया, अंध है दर की खबर ना पाई। नानक हरनाक्ष नहीं बिदारिया, अंध है दर की खबर ना पाई। राग पहरों महला चौथा, चौपदे घर पहला।

सो कृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चलै तुध नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जमजाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसिया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध नाम।

जहाओ। ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरह, मन मुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह तिन निंदा है, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भवजल।

सुन सहज मह बुनत हमारी हमरा झगड़ा रहा ना को पंडित मुल्ला छाडे दो रहा।

ਹੋਏ। ਏਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਪਹਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ।

खेल तुझ महे समाहे। ज्यों पावै त्यों राख ले सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रब रहया गुरमिल नानक हर हर कहया अष्ट सिद्ध नव निद ए कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल प्रगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल

सहज अवल धूड़मणि गाडी चालती, पीछे तिनका लेकर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती, सर धोवन चाली लाडली रहाओ, तो भी तो वह बिरह बिराता,

भेद तन सुगंध ढूंढे परदेश अप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुआर।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सत्संगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै मल्हार महला चौथा जितने जी जंत प्रभ कीने तितने सिर का

कान हर बरस सगल जग छाया, पै कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा, मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी,

आप उदाहरण आयो रहाओ, दर्शन भेट तो होत पुनीता, हर हर मंत्र दृढ़ायो, काटे रोग पहे मन निर्मल, हर हर औख दिखायो, अस्थित पहे बसे सुखथाना, बहोर ना कतहुंता।

पद ते उधारण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवां।

मीन ब्यासा ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गो जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावै गो जात न जात देख मत परम हो सुख जनक।

फिर शाहा वडपुरख स्वामी रहाओ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराए अमृत नाम मन रहया अगहा।

प्रहार्थ कहै साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कहै मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं